तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी।

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan wat drukker voor de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Nu 4 kilometer en 10 minuten extra. Door die wegwerkzaamheden heb je 1 rijstrook minder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. उजाला के साथ घर घर में ऑटो में चाहे जहां पर भी हैं आप उजाला ही उजाला सुनते हैं उजाला के साथ अनहेल गुड मॉर्निंग मैट आर जे गुड मॉर्निंग

0: live vanuit de hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, maar in totaal staat er zo'n 16 kilometer. Het is dus niet bepaald een hele drukke ochtendspits. De A50 die valt wel op richting Arnhem vanuit Os. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier extra. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM Plus तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB Plus पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
3: तुझे लगे ना नजरिया
4: पुरानी यादों के साथ और सुंदर गीतों के संग बनती है उजाला रेडियो की प्रस्तुति

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊँ। ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और ज़िंदा है।

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Des bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio. Ujala hi ujala. Des bhar mein. Haan. Har gaon mein. Har ek kona mein. Auto mein. Ghar mein. Sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए बेई आई बिनकोट यार तोर जन्मदिन है तोर सालगिरह है अब खाए त्रावे तोर विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है या किसी का मुंडन संस्कार है उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

मौसम मस्ताना और रास्ता अनजाना। आशा जी एंड दिलराज कौर से आप सुने फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, और ये है उजाला रेडियो।

और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

हम यहीं पर आपसे इस प्रोग्राम के साथ जुदा होंगे। बहुत जल्दी फिर मिलने के लिए आप ही का मन प्रिय उजाला रेडियो पर।

कैसी है लगदी कमाल तेरी अखियां गुलाब, या प्रातः मोए गाना एट द फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। या इन द क्लिप सी ऑन अंदर शहीद कपूर सामने मेंट कृति सेन, या सी यू सी सी सामने स्किटर इन द मोए वीडियो क्लिप।

अमित जयराम के साथ। सारी दुनिया जला देंगे एड फिल्म एनिमल, या इस ओक विशो नंबर दी नीत माखम ब्रेकर।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार, ये है यू आर उजाला रेडियो। स्टूडियो में कुछ देर तक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेकर कुछ मिले जुले संगीत। सबसे पहला सिलेक्शन है लैला मैं लैला।

हाय हाय क्या बात है लैला लैला तू लैला। सबसे पहला सिलेक्शन हमारा प्रोग्राम में पेश की गई है। हरे को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे हैं स्टूडियो से। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते आप डायल कर सकते हैं एम्स्टरडम शहर में 0204090807 पर 02-409-08-07 पर। मिले जुले संगीत में आइए एक गजल सुनते हैं। इस बार है जगजीत सिंह की आवाज़।

मिले जुले संगीत में हम आपको अब एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। जब से हो गई मैं यंग, दिल करने लगा है तंग, क्या बात है आशा जी की आवाज़।

0: और तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने तो नहीं किया, शायद आपने किया है। तुमने किसी से प्यार किया?
1: किसी से कभी प्यार किया है?

0: किया है।
1: अरे बोलो ना, तुमने किसी से कभी प्यार किया है? सिलेक्शन पेश की गई हमारे सभी श्रोताओं के वास्ते, हाँ जी आपके वास्ते भी। युवा का पैगाम उजाला रेडियो आप सुन रहे हैं। और अब जानो मेरी जान मैं तुझ पे कुर्बान, फिल्म का नाम शान।

बीते हुए दिनों का हॉट सॉन्ग आपकी खिदमत में अर्ज है। ईमानदार नामक फिल्म से आइए सुनते हैं, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है।

द रॉकिंग सेंसेशन यू आर उजाला रेडियो के जरिए आप ये सिलेक्शन सुने हैं और इस दिल में किया रखा है तेरा ही नाम छुपा रखा है। नगमा हम आपको सुनाने वाले हैं भूपेंद्र की आवाज। लीजिए सिलेक्शन हम पेश करें हमारे सभी सुनने वालों के वास्ते।

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन उजाला पिंड ने उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो उजाला रेडियो आपके साथ
3: चलती है क्या नौ से बारह
4: उजाला रेडियो पर संगीत का सफर जारी है

रेडियो है, रेडियो है, रेडियो है। ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammad Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर के हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

0: मेरी जान ना सता तू
1: उजाला रेडियो दे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: कोई है गुड़िया तेरी, क्या है किसी ने मारा? टूट गया क्या तेरा बंदर, टूट गया क्या हाथी? टूट गया क्या तेरा बंदर, टूट गया क्या हाथी? नाना क्या फिर किसे बिछड़ गया तेरा कोई साथी?
1: कौन?
2: काबली वाला।

0: फोटो तो सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: फोटों पे सच्चाई रहती है।
2: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती है। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।